0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: So, we need new jingle alley. We got to get in that studio.

0: in touch with Hours FM on WhatsApp 07784 691 440. 07784 691 440.
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज़ एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज़ सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज़ रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज़ आवाज़ एफएम के साथ
2: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaz FM on 99.8.
3: From the flight path at Southampton Airport to the ocean terminal at Southampton Docks, you're listening to Awaz FM.
4: Hello, this is Ruxana Simro. I'd like to dedicate this to Awaz Radio Southampton and the whole team. Naam gum jayega, chehra badal jayega, meri awaz se pehchan. Thank you, Ali.
3: Southampton's Community Radio, Awaz FM.

कोल संख तुम्हारी ऐसे तैसे से ढपक ढपक लगे हुए हजाम हजाम कर बंद कर रही नौ टंकी। अरे मुंह का देख रहा है किसी राजा महाराजा को राजू राजू कह कर बुलाओगे का? ये बिलुआ को हजाम नहीं बार बार कहकर बुलाओ बार बार और वो भी इज्जत से बिल्लू बार बार समझा के नहीं नहीं दही खींच का पन ही आए ससुरा मार दे तो पटाक से।

0: I wonder what you would do if you had the power to dream any dream you wanted to dream.
1: Southampton's Community Radio, Hours FM.
0: Fulfilling all your wishes. Music beyond belief.
2: एक पल की लापरवाही।
3: अंकल, मुझे तो बड़ी होके एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था, मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था, मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: आई एम सॉरी बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। फोकस ऑन द रोड, वेयर योर सीट बेल्ट, डोंट यूज मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: How do you say it? A was or a was?

0: doesn't mean you are.
1: One in every five road deaths is a pedestrian. Just because you use the road doesn't mean you own it. Respect everyone's journey.
2: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
3: This is your host from Norfolk, Alex Aller on Awaz Drive Time. Listen to me at 4 to 6 on Fridays, 99.8 FM. Turn it up and lock it in.
4: Happy Friday on Awaz, 99.8 FM.
3: Call me on our landline, 02381 9800 72.
4: Finish your Friday with me.

0: This is Natalie DeLucchio, and keep listening to Awaaz FM.
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर. लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में. स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ.
2: You're listening to Awaaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
3: Hello friends, my name is Rahi Baines and I've come to remind you to listen to my radio show Kinare Kinare every Tuesday between 11 a.m. and 1 p.m. As usual, there is loads of music, masti and manoranjan for you. The program includes chutkle, funny poems and skits, Bollywood biographies, birthday bash whereby I mention the names of all my Facebook friends who had their birthdays in the last 7 days, Zara Hatke, which is off the beaten track pieces of musical items, and a lot more. So see you next Tuesday between 11 a.m. and 1 p.m. here on Awaaz FM.

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। फोकस ऑन द रोड, वेयर योर सीट बेल्ट, डोंट यूज मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: Shall we check in what song we got in next? Let's have a listen to this.
4: Yeah.
5: मेरा जवाब
3: I love listening to this stuff. Like, this is what the radio show does, the diversity. Have a little listen to that. Yeah, so that is Chitkaha. The artist is Aditi Singh Sharma. This was 2010 banger, this was. And it's from the film Emotional Atkachar. So there we go. We've got it all going on in the sports studio today.
4: It's all going off, isn't it?
3: Yeah, I just can't get out of
4: the store. It's all going on apart from the adverts.
3: Yeah, exactly. I can't wait for the next one. The next one is the artist. It's called Dr. Zeus.

0: एक पल की लापरवाही, आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। फोकस ऑन द रोड, वेयर योर सीट बेल्ट, डोंट यूज मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: Just because I'm a driver doesn't mean I can see you.
2: Just because you're at the speed limit doesn't mean you're not dangerous.
3: Just because you're in a rush doesn't mean you can ignore the crossing.
4: Just because you're driving doesn't take away my right of way.
5: Just because it seems clear doesn't mean you shouldn't stop.
6: Just because you are surrounded by metal doesn't mean I'm not flesh and blood.
7: Just because you're nearly home doesn't mean you are.
8: One in every five road deaths is a pedestrian. Just because you use the road doesn't mean you own it. Respect everyone's journey.
9: साउथैम्पटन एक खूबसूरत तारीखी शहर, समंदर की नीली लहरों के किनारे ये आबाद शहर अपने अंदर कितने राज छुपाए हुए हैं। मेरी जवानी का शहर जिसकी गोद में मैंने कितने सुनहरे दिन गुजारे हैं, मैं तुम्हें सलाम करता हूँ। इसी शहर के दिल के अंदर हमारा एक कम्युनिटी रेडियो आवाज़ ने जन्म लिया है और इसके अंदर भी कितनी आवाज़ें पोशीदा हैं, उनमें एक प्रोग्राम शेरो नगमा भी है। ज़िंदगी के दो बड़े साथी, हमारा शेरो नगमा हर जुमेरात को दिन के 2 बजे शुरू होता है। मेरा नाम मकबूल अहमद सईद है और मेरे बादशाह आसिफ अली साहब मेरे नगमागर मेरे साथ होंगे। हमारे दरबार के दरवाज़े सब के लिए खुले हैं, ज़रूर उसमें शामिल हों, वक्त किसी का दोस्त नहीं। ये सांसों की जादूगरी न जाने कब थम जाए, वक्त के साथ चलें, वक्त की तज़ीम करें। आखिर में दो शेर, जाती बहार में खिलते फूल के दिल में दर्द था यह खुशबू, जाती बहार में खिलते फूल के दिल में दर्द था यह खुशबू, ये वो हंसता रोगी जाने जिसने ज़ख्म छुपाए हैं। शम में बज में तरब बुझ जाए फिर अपने भी फराए हैं, दिन डूबे तो छुप जाते हैं, साए आखिर साए हैं।

0: From the flight path at Southampton Airport to the ocean terminal at Southampton Docks, you're listening to Hours FM.
1: Hello, this is Oksana Simro. I'd like to dedicate this to Hours Radio Southampton and the whole team. Nam Gum Jaiga, Chera Badal Jaiga, Meri Awaaz Hai Pehchan. Thank you, Ali.
0: Southampton's Community Radio, Hours FM.
2: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
3: You're listening to Awaaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
4: चलते हैं पाकिस्तान लाइन पर हैं अजमल शोबी.
5: अस्सलाम वालेकुम.
4: वालेकुम सलाम.
5: आपको वेलकम कहता हूं मैं कराची पाकिस्तान में.
4: हां जी शुक्रिया.
5: मैं सामीन को सबसे पहले तो है कि आवाज़ एफएम टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा मैं कि उन्होंने अपनी काबिज को जो है वो एक इस तरह आगे पहुंचाया है कि एक लिसनर्स को एक ऐसा चैनल मिल गया सुनने के लिए कि जहां पर वो अपनी पसंद का खूबसूरत सब म्यूजिक भी सुन सकते हैं इंफॉर्मेशन भी सुन सकते हैं और बहुत सारी मालूम उन्हें फ्राहम होंगी आवाज रखे और उसके साथ साथ जो है तमाम लिसनर्स को जो इस वक्त मुझे यूके में सुन रहे हैं तमाम लिसनर्स को मैं मुबारकबाद दूंगा आवाज एफएम की जानिब से मेहरबानी तो आवाज एफएम में इतने खूबसूरत लोग यहाँ मौजूद है और मैं मुसलसल ट्रांसमिशन को सुन रहा हूँ बहुत मजा आ रहा है बहुत इंजॉय कर रहा हूँ आप सबके साथ बहुत खूबसूरत म्यूजिक भी मिल रहा है इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है और पाकिस्तान से भी प्रोग्राम हो रहे हैं यूके से प्रोग्राम हो रहे हैं तो बड़ा ऐसे अजीब बड़ा खूबसूरत कहते हैं मिला जुला सा माहौल होता है जब कहते हैं ना कि बड़े हसीन खूबसूरत फूलों को हम यकजा करते हैं तो एक बड़ा खूबसूरत और बड़ा प्यारा अट्रैक्टिव जो है गुलदस्ता बन जाता है और बनता है
4: और अजमल साहब इधर भी अपना ये जो रिसेंट ईयर्स जो गुजरे हैं ना इनमें पाकिस्तानी और इंडियन हमारी जो अपनी कम्युनिटी है एशियन ये काफी ज्यादा बढ़ गई है और इस चीज की जरूरत थी कि जो हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म इधर मिलना चाहिए जिसमें हमारे अपनी कम्युनिटी की पहचान हो हमारी बात हो और उसके लिए ये बहुत अच्छा कदम जो है ये उठाया है
5: बिल्कुल बहुत अच्छा कदम है और इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ आवाज एफएम की टीम को
4: थैंक यू वेरी मच
5: बस थैंक यू वेरी मच और मैं बस तमाम लिसनर्स को कहूंगा कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें और एंजॉय करें और उम्मीद करता हूँ कि हमारे आज ही डीजे से प्रोग्राम करेंगे यहाँ पर उन सबके साथ खूब एंजॉय कीजिएगा और बिल्कुल ये आपका अपना एक फैमिली चैनल होगा इंशाल्लाह ताला और बिल्कुल आप आवाज एफएम को अपने फैमिली चैनल की तरह पाएंगे इनके तमाम आरजेस को आप अपने एक फैमिली मेंबर्स की तरह पाएंगे बस क्योंकि मिलने जुलने से मोहब्बत बढ़ती है और जब मोहब्बत बढ़ती है तो कहते हैं दूरियां खत्म हो जाती हैं तो बस इसी दूरी के साथ इसी मोहब्बत के पैगाम के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिंदगी बखैर
4: थैंक यू वेरी मच जी टेक केयर अल्लाह हाफिज़ बाय बाय
5: आई लव यू ऑल

0: Our new jingle could just be us saying we need a new jingle.
1: We need a new jingle, yeah.
2: एक पल की लापरवाही.
3: अंकल, मुझे तो बड़ी होके एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था. मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था. मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था.

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Focus on the road. Wear your seatbelt. Don't use mobile phones while driving. Drive responsibly. घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: From the flight path at Southampton Airport to the ocean terminal at Southampton Docks, you're listening to Hours FM.

0: हर माँ के लिए उसका बच्चा स्पेशल होता है, और एक तरफ मेरी माँ जो सारी उम्र मुझे आम सा बनाने में लगी रही, बहुत ही आम सा ट्रीट करती थी वो मुझे। मुझे तो याद तक नहीं कि कभी उसने मुझे स्पेशल समझा हो। बहुत समझाया, बहुत समझाया दुनिया ने उसे कि देख तेरा बेटा स्पेशल है, मगर वो फिर भी अपनी जिद पर अड़ी रही। और देखिए आज उसकी जिद ने मुझे कहां ला खड़ा किया, अपने स्पेशल से बेटे को कैसा कैसा आम सा बना दिया। आज मैं तो शायद स्पेशल नहीं, मगर मेरी मां बहुत स्पेशल है। लव्स तो मेरे पास कभी थे ही नहीं, मगर फिर भी थैंक यू मां।
1: एक पल की लापरवाही, आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। फोकस ऑन द रोड, वेयर योर सीट बेल्ट, डोंट यूज मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
2: Just because I'm a driver doesn't mean I can see you.
3: Just because you're at the speed limit doesn't mean you're not dangerous.
4: Just because you're in a rush doesn't mean you can ignore the crossing.
5: Just because you're driving doesn't take away my right of way.
6: Just because it seems clear doesn't mean you shouldn't stop.
7: Just because you're surrounded by metal doesn't mean I'm not flesh and blood.
8: Just because you're nearly home doesn't mean you are.
9: One in every five road deaths is a pedestrian. Just because you use the road doesn't mean you own it. Respect everyone's journey.
10: लोग कहते हैं कि सपने कभी पूरे नहीं होते, पर मैंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि मैं दुनिया की आवाज नहीं सुनता हूं तो सिर्फ अपने दिल की आवाज
11: सुनो।

0: From Merrioak to Mayfield, from Bitton to Bassett, this is Hours FM.
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
2: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaz FM on 99.8.
3: Awaz FM, local radio. Communities making waves, turning the tide on isolation.

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Focus on the road. Wear your seatbelt. Don't use mobile phones while driving. Drive responsibly. घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: साउथैम्पटन एक खूबसूरत तारीखी शहर, समंदर की नीली लहरों के किनारे ये आबाद शहर अपने अंदर कितने राज छुपाए हुए हैं। मेरी जवानी का शहर जिसकी गोद में मैंने कितने सुनहरे दिन गुजारे हैं, मैं तुम्हें सलाम करता हूँ। इसी शहर के दिल के अंदर हमारा एक कम्युनिटी रेडियो आवाज़ ने जन्म लिया है और इसके अंदर भी कितनी आवाज़ें पोशीदा हैं, उनमें एक प्रोग्राम शेर व नगमा भी है। ज़िंदगी के दो बड़े साथी हमारा शेर व नगमा हर जुमेरात को दिन के 2 बजे शुरू होता है। मेरा नाम मकबूल अहमद सईद है और मेरे बादशाह आसिफ अली साहब मेरे नगमागर मेरे साथ होंगे। हमारे दरबार के दरवाज़े सब के लिए खुले हैं, ज़रूर इसमें शामिल हों, वक्त किसी का दोस्त नहीं। ये सांसों की जादूगरी न जाने कब थम जाए, वक्त के साथ चलें, वक्त की तज़ीम करें। आखिर में 2 शेर, जाती बहार में खिलते फूल के दिल में दर्द था यह खुशबू, जाती बहार में खिलते फूल के दिल में दर्द था यह खुशबू, ये वो हंसता रोगी जाने जिसने ज़ख्म छुपाए हैं। शम्मे बज़्मे तरब बुझ जाए फिर अपने भी पराए हैं, दिन डूबे तो छुप जाते हैं, साए आखिर साए हैं।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: I wonder what you would do if you had the power to dream any dream you wanted to dream.
3: Southampton's Community Radio, Hours FM.
2: Fulfilling all your wishes. Music beyond belief.

0: In the meantime, we need Simon's assistant to put the sliders down to shut me up. So I'm going to...
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
2: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaz FM on 99.8.
3: You're listening to Awaz FM.

0: Awaaz FM is supporting local radio.
1: Local radio.
0: Communities making waves, turning the tide on isolation.
2: एक पल की लापरवाही.
3: अंकल, मुझे तो बड़ी हो के एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था. मुझे बड़ी हो फिर डॉक्टर बनना था. मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था.

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Focus on the road. Wear your seatbelt. Don't use mobile phones while driving. Drive responsibly. घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: Hello, I'm calling from Stockholm, Sweden. This is Elton's mother. I just want to say it's amazing to hear your voice on the radio. I'm so proud of you. I love you. I miss him. And I'm so excited to come to Southampton for a visit. Bye.

अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज़ आवाज एफएम के साथ।

0: हम सॉरी बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: In the meantime, we need Simon's assistant to put the sliders down to shut me up. So I'm going to...
3: माँ हर समय हर जगह नहीं हो सकती, ऐसे में उसका एहसास देती है। हर माँ जैसी माँ को हमारा प्यार भरा सलाम।
4: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। फोकस ऑन द रोड, वेयर योर सीट बेल्ट, डोंट यूज मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
5: Just because I'm a driver doesn't mean I can see you.
6: Just because you're at the speed limit doesn't mean you're not dangerous.
7: Just because you're in a rush doesn't mean you can ignore the crossing.
8: Just because you're driving doesn't take away my right of way.
9: Just because it seems clear doesn't mean you shouldn't stop.
10: Just because you are surrounded by metal doesn't mean I'm not flesh and blood.
11: Just because you're nearly home doesn't mean you are.
12: One in every five road deaths is a pedestrian. Just because you use the road doesn't mean you own it. Respect everyone's journey.
13: Yang Yingwu of China.
2: Friend of the show.
13: She's one of the 900 that listens.
2: She's
13: big shout out to Yang.

0: From Merrioak to Mayfield, from Bitton to Bassett, this is Hours FM.
1: Uncle, मुझे तो बड़ी हो के एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था, मुझे बड़ी हो के डॉक्टर बनना था, मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। फोकस ऑन द रोड, वेयर योर सीट बेल्ट, डोंट यूज मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: If you can't do my birthday, you will get a surprise.

0: कितना अच्छा है कि माँ हमारे लिए हर पल मौजूद है। शुक्रिया अदा करें मॉम का।
1: थैंक यू मॉम।
2: जस्ट बिकॉज आई एम अ ड्राइवर डजंट मीन आई कैन सी यू।
1: Just because you're at the speed limit doesn't mean you're not dangerous.
3: Just because you're in a rush doesn't mean you can ignore the crossing.
4: Just because you're driving doesn't take away my right of way.
5: Just because it seems clear doesn't mean you shouldn't stop.
6: Just because you are surrounded by metal doesn't mean I'm not flesh and blood.
7: Just because you're nearly home doesn't mean you are.
8: One in every five road deaths is a pedestrian. Just because you use the road doesn't mean you own it. Respect everyone's journey.
9: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवरटाइज कीजिए। आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
10: لائٹ ہاؤس انٹرنیشنل چرچ کی جانب سے ہفتہ وار مسیحی پروگرام نور خدا
11: ہر جمعرات صبح 8 to 9 PM
12: نور خدا
13: ہر ویروار سویرے 8 to 9 تک
14: نور خدا
10: آواز ریڈیو 99.8 FM پر
15: نور خدا
16: اس پروگرام میں آپ سنتے ہیں مسیحی گیت اور غزلیں مسیحی شاعری اور کلام مقدس کی میٹھی میٹھی

0: साउथहैम्पटन एक खूबसूरत तारीखी शहर, समंदर की नीली लहरों के किनारे ये आबाद शहर अपने अंदर कितने राज छुपाए हुए हैं। मेरी जवानी का शहर जिसकी गोद में मैंने कितने सुनहरे दिन गुजारे हैं, मैं तुम्हें सलाम करता हूँ। इसी शहर के दिल के अंदर हमारा एक कम्युनिटी रेडियो आवाज़ ने जन्म लिया है और इसके अंदर भी कितनी आवाज़ें पोशीदा हैं, उनमें एक प्रोग्राम शेर नगमा भी है। ज़िंदगी के दो बड़े साथी, हमारा शेर नगमा हर जुमेरात को दिन के 2 बजे शुरू होता है। मेरा नाम मकबूल अहमद सईद है और मेरे बादशाह आसिफ अली साहब मेरे नगमागर मेरे साथ होंगे। हमारे दरबार के दरवाज़े सब के लिए खुले हैं, ज़रूर इसमें शामिल हों, वक्त किसी का दोस्त नहीं। ये सांसों की जादूगरी न जाने कब थम जाए, वक्त के साथ चलें, वक्त की तज़ीम करें। आखिर में दो शेर, जाती बहार में खिलते फूल के दिल में दर्द था यह खुशबू, जाती बहार में खिलते फूल के दिल में दर्द था यह खुशबू, ये वो हंसता रोगी जाने जिसने ज़ख्म छुपाए हैं। शम्मे बज़्मे तरब बुझ जाए फिर अपने भी पराए हैं, दिन डूबे तो छुप जाते हैं, साए आखिर साए।
1: In Britain today, we all know that many, many people are trapped behind the wheel of a car. We ask which is the best way to reach them. Let's see the figures. Look at that, an enormous 14 million of them are listening to commercial radio. By contrast, only 300 are reading their newspapers whilst at the wheel, all of them cabbies. Overwhelming evidence that for the motorist, radio is the route that's right.
2: Radio, the medium that's now large.
3: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046 or you can email info@hoursfm.co.uk.
4: एक पल की लापरवाही।
5: अंकल, मुझे तो बड़ी हो के एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था, मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था, मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: I'm going to send you the message again, and you can't see if you come to my birthday, you will get a surprise.

0: साउथैम्पटन एक खूबसूरत तारीखी शहर, समंदर की नीली लहरों के किनारे ये आबाद शहर अपने अंदर कितने राज छुपाए हुए हैं। मेरी जवानी का शहर जिसकी गोद में मैंने कितने सुनहरे दिन गुजारे हैं, मैं तुम्हें सलाम करता हूँ। इसी शहर के दिल के अंदर हमारा एक कम्युनिटी रेडियो आवाज़ ने जन्म लिया है और इसके अंदर भी कितनी आवाज़ें पोशीदा हैं, उनमें एक प्रोग्राम शेर व नगमा भी है। ज़िंदगी के दो बड़े साथी हमारा शेर व नगमा हर जुमा रात को दिन के 2 बजे शुरू होता है। मेरा नाम मकबूल अहमद सईद है और मेरे बादशाह आसिफ अली साहब मेरे नगमागर मेरे साथ होंगे। हमारे दरबार के दरवाज़े सब के लिए खुले हैं, ज़रूर उसमें शामिल हों, वक्त किसी का दोस्त नहीं। ये सांसों की जादूगरी न जाने कब थम जाए, वक्त के साथ चलें, वक्त की तज़ीम करें। आखिर में 2 शेर, जाती बहार में खिलते फूल के दिल में दर था यह खुशबू, जाती बहार में खिलते फूल के दिल में दर था यह खुशबू, ये वो हंसता रोगी जाने जिसने ज़ख्म छुपाए हैं। शम्मे बज़्मे तरब बुझ जाए फिर अपने भी पराए हैं, दिन डूबे तो छुप जाते हैं, साए आखिर साए हैं।
1: एक पल की लापरवाही।
2: अंकल मुझे तो बड़ी हो के एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था, मुझे बड़ी हो फिर डॉक्टर बनना था, मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Focus on the road. Wear your seatbelt. Don't use mobile phones while driving. Drive responsibly. घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: The technical issue is me.
4: Yeah,
3: any issues we have technically is always me. I'm the man who has to press the buttons.
5: Sir,

0: मेरी याद आए, गुरेज करती हुई हवा की लहरों पे हाथ रखना, मैं खुशबुओं में तुम्हें मिलूंगा, मुझे गुलाबों की पत्तियों में तलाश करना, मैं औस कतरों के आईनों में तुम्हें मिलूंगा। अगर सितारों में, औस कतरों में, खुशबुओं में ना पाओ मुझे, अपने कदमों में देख लेना, मैं गर्द होती मुसाफितों में तुम्हें मिलूंगा।
1: Just because I'm a driver doesn't mean I can see you.
2: Just because you're at the speed limit doesn't mean you're not dangerous.
3: Just because you're in a rush doesn't mean you can ignore the crossing.
4: Just because you're driving doesn't take away my right of way.
5: Just because it seems clear doesn't mean you shouldn't stop.
6: Just because you are surrounded by metal doesn't mean I'm not flesh and blood.
7: Just because you're nearly home doesn't mean you are.
8: One in every five road deaths is a pedestrian. Just because you use the road doesn't mean you own it. Respect everyone's journey.
9: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवरटाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर, और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
10: Drive on your smart speaker. Drive. Discuss. Debate. Deliver.

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: आपकी आवाज, आपका रेडियो, आपके शहर।

बात हजम नहीं हो रही, पसंद तुझे लड़के में आया मेरे क्या। मैं बोली तेरी आंखों पे मर गई, मैं बोली तेरी बातों पे मर गई, तू थोड़ा थोड़ा अच्छा लगा जो मैं तुझे पे ही पूरा।

0: You're listening to Awaaz FM 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
1: एक पल की लापरवाही।
2: अंकल, मुझे तो बड़ी हो के एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था। मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था। मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: here on Awaz FM.
1: दोस्तों, मैं हूं सीमा सरगम। मेरा प्रोग्राम आवाज कैरियोकी की क्लब सुनना न भूलिए, जो कि हर संडे शाम 6 बजे से 8 बजे तक आवाज एफएम पे ब्रॉडकास्ट किया जाता है। इस प्रोग्राम में आप ही की आवाज में गाए हुए कैरियोकी की गीत पेश किए जाते हैं। अपने गीत भेजने के लिए व्हाट्सएप का ये नंबर जरूर नोट कर लें। नंबर है 07784691440। रिमेम्बर, आवाज कैरियोकी Club every Sunday 6 to 8 p.m.
2: Every Saturday at 5, it's the Winchester Talking Newspaper on Hours FM.
3: Arriwo emi alama kumpele ku.
4: Barra drums from Kingston to the Nile. Join me, Tap, for a show where you can listen to the vibes of Africa blended with music of the Caribbean. Combined with news, views, and opinions, bringing Africa and the Caribbean culture alive every Sunday at 1 p.m. only on Awaz 99.8 FM. See you then.

नमस्ते दोस्तों, आज के इस गाने सुने अनसुने कार्यक्रम में मैं गजेंद्र खन्ना आपका स्वागत करता हूँ। आज का कार्यक्रम फीचर करने वाला है फिल्म रोजा के गीत, जो 90s में आई थी। इसी फिल्म के तमिल संस्करण से एआर रहमान ने अपना डेब्यू किया था। ये एक रोमांटिक स्टोरी भी थी और एक पेट्रियोटिक एलिमेंट लिए हुए भी थी, क्योंकि इसके मुख्य किरदार अरविंद स्वामी जी कश्मीर में टेररिस्ट द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और उनकी पत्नी रोजा यानी मधु पर क्या गुजरती है इस फिल्म में दिखाया गया। इस फिल्म का एक देशभक्ति भरा गीत था, भारत हमको जान से प्यारा है। आइए उस गीत से कार्यक्रम की शुरुआत करें। हरिहरन ने इस गीत को गाया था। फिल्म के सभी गीतों को पीके मिश्रा ने लिखा था।

एआर रहमान को ये फिल्म कैसे मिली उसका भी बहुत रोचक किस्सा है। वे सबसे पहले रोजा फिल्म के डायरेक्टर मणि रत्नम को एक अवार्ड पार्टी पर मिले थे जो उनके लियो कॉफी के कमर्शियल के लिए थी, जिसका जिंगल रहमान ने कंपोज किया था। मणि रत्नम की कजन शारदा और उनके पति त्रिलोक ने इस कमर्शियल को प्रोड्यूस किया था और वहीं मणि

रत्नम को रहमान से उन्होंने मिलवाया। उस समय इलैयाराजा के साथ रत्नम साहब के कुछ डिफरेंसेस थे, जिसके चलते उन्होंने रहमान को फिल्म के गीतों को कंपोज करने के लिए अप्रोच किया और साइन भी कर लिया। इस फिल्म के लिए एआर रहमान ने एक सैड गीत बनाया था, पर मणिरत्नम के सुझाव पर उन्होंने इसे अडेप्ट करते हुए एक हैप्पी सॉन्ग बना दिया था जो खूब चला था। ये गीत मिनमिनी की आवाज में श्रोतागण आज तक पसंद करते हैं। आइए सुनते हैं वही गीत, छोटी सी आशा।

किस खूबसूरती से गाया है मिनमिनी ने इस गीत को। मूल तमिल फिल्म में भी ये गीत मिनमिनी ने ही गाया था और ए आर रहमान की जिद थी कि हिंदी में भी मिनमिनी ही इस गीत को गाएं। उस समय मिनमिनी बीमार चल रही थी और ए आर रहमान ने पूरे 2 महीने इंतजार किया था कि वे ठीक हो जाएं और इस गीत को गाएं। और क्या कमाल किया उन्होंने इस गीत में। फिल्म में मधु इसी गीत से इंट्रोड्यूस होती है। उनकी बहन को देखने अरुण स्वामी आते हैं और उन्हें पसंद कर लेते हैं। शादी के बाद जब वो अपने गाँव से विदा हो रही होती है तो इसी गीत का एक छोटा भाग भी फिल्म में था, जिसे अब हम सुनेंगे मिनमिनी की ही आवाज में।

अब मैं आपको इस फिल्म का टाइटल गीत सुनाना चाहूंगा। यह फिल्म में दो भागों में था। पहला भाग सुनेंगे, इसको एसपी बाला सुब्रमण्यम ने गाया है और उनके साथ सुजाता मोहन का स्वर भी आपको सुनाई देगा।

सुजाता मोहन मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में जाना माना नाम रही हैं, पर हिंदी फिल्मों में उन्होंने ना के बराबर गाया है। रोजा जाने मन के दूसरे भाग में उन्हें हम फिर सुनेंगे हरिहरन के साथ।

कंपोजर आनंद मिलिंद ने इस गीत की धुन को बहुत लिबरली इस्तेमाल किया था 1994 की फिल्म सुहाग के गीत तेरे लिए जानम में। चलिए वो गीत भी आपको सुना दूं जिसे समीर ने लिखा है और एसपी बाला सुब्रमण्यम और केएस चित्रा ने गाया था।

एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा ने रोजा में भी एक बहुत ही प्यारा गीत गाया था, जिसकी पिक्चराइजेशन भी बहुत खूबसूरत थी। आइए उसको सुने, ये हसी वादियां ये खुला आसमां।

इस फिल्म को टाइम मैगजीन ने 2005 में अपनी ऑल टाइम 100 मूवीज लिस्ट के टॉप 10 साउंडट्रैक्स में गिना था। इस फिल्म के लिए ए आर रहमान को नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन भी मिला था। इस पुरस्कार को चुनने के लिए जब नेशनल फिल्म अवार्ड जूरी बैठी तो टाई हो रहा था वोट्स का इलैयाराजा की फिल्म तेवर मगन और ए आर रहमान के लिए रोजा फिल्म के लिए। तब डायरेक्टर बालू महिंद्रा जो जूरी बोर्ड को हेड कर रहे थे उन्होंने टाई ब्रेकिंग वोट डाला था ए आर रहमान के फेवर में। इस तरीके से नेशनल अवार्ड पाया था अपनी पहली फिल्म के लिए ए आर रहमान ने। इस फिल्म का अब बस एक ही गीत बजाना बाकी है जो एक इंटरेस्टिंग गीत है क्योंकि इसमें ए आर रहमान ने मुखड़ा अंतरा का सॉन्ग पैटर्न फॉलो ही नहीं किया था। सुहागरात के समय ये फिल्म में गीत मौजूद था। चलिए सुने आज की फिल्म रोजा का ये आखिरी गीत रुक्मणी रुक्मणी, जिसे गाया था उस जमाने के टॉप पॉप सिंगर्स बाबा सहगल और श्वेता शेट्टी ने।

0: दूसरे संगीतकारों को इस गीत से काफी इंस्पिरेशन मिली, तो दो तीन इसके इंस्पिरेशन भी आपको सुना दूं। 1993 में फिल्म आई थी मेहरबान, कंपोजर्स दिलीप सेन और समीर सेन ने इस गीत की धुन को इस्तेमाल किया था एक गीत बोल गोरी बोल जरा इतनी सी बात में, जिसे अनुराधा पौडवाल और इला अरुण ने गाया था। महेंद्र दहलवी ने इस गीत को लिखा है। चलिए सुनते हैं मेहरबान फिल्म का ये गीत।
1: ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना

कंपोजर बप्पी लाहिरी को भी इस गीत से काफी इंस्पिरेशन मिली और 1994 की फिल्म अंदाज में एक गीत आया था लैला बिचारी, जिसमें उन्होंने इस गीत को काफी इस्तेमाल किया। इस गीत को अलका याग्निक, कुमार शानू और सुदेश भोसले ने गाया था। इंदीवर साहब ने इसके बोल लिखे थे और पर्दे पर अनिल कपूर, करिश्मा कपूर, शक्ति कपूर इत्यादि आपको पर्दे पर दिखे थे। चलिए सुनते हैं ये गीत लैला बिचारी।

और अब आखिरी इंस्पिरेशन इस गीत की जो 1995 में अंगरक्षक फिल्म में आनंद मिलिंद ने कंपोज की थी। समीर का लिखा हुआ ये गीत है, इसे गाया है अभिजीत और पूर्णिमा ने। मुझे यानी गजेंद्र खन्ना को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। सी यू सून।

0: You're listening to Awaaz FM 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
1: एक पल की लापरवाही।
2: अंकल, मुझे तो बड़ी होके एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था। मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था। मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

नमस्ते दोस्तों, आज के इस गाने सुने अनसुने कार्यक्रम में मैं गजेंद्र खन्ना आपका स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम के लिए आपके फरमाइशी गीत आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मशहूर प्लेबैक सिंगर जुबिन गर्ग

जी का अचानक देहांत हो गया, जिससे उनके लाखों फैंस को बहुत धक्का लगा। उनकी याद में मैंने विचार किया है कि उनके गाए हुए गीतों पर एक कार्यक्रमों की श्रृंखला की जाए। वे आसाम के जोरहाट से बिलोंग करते थे और शुरू में असमिया गीत गाकर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। उनकी माताजी भी गायिका थी और इसका प्रभाव जुबिन जी पर भी पड़ा। असमिया गीतों के द्वारा शुरुआत करने के बाद उन्होंने कुछ हिंदी गैर फिल्मी गीतों से शुरुआत की थी 1995 के आसपास। आज मैं बजाने वाला हूं उनके गाए हुए हिंदी फिल्मी गीत। 1998 में एक हॉरर फिल्म आई थी पुरानी खबर, जिसके लिए जुबिन दा ने दो गीत गाए थे। उसी में से एक से मैं कार्यक्रम शुरू करूंगा। इश्फाकुल का संगीत है, विशुराज ने इस गीत को लिखा है। कुछ तो कहो।

इस गीत में उनके गायन से आपको 90s के पॉपुलर गीतों की झलक मिली होगी। इसके बाद उन्होंने दिल से डोली सजा के रखना और वास्तव में स्कोर में कुछ गायन किया था। इसके बाद 2000 में फिल्म आई थी फिजा, जो ऋतिक रोशन की दूसरी फिल्म थी। इसमें उनका रोल था अमान का और एक गीत था उनके कैरेक्टर से संबंधित, जिसका नाम था मेरे वतन अमान्स फ्यूरी, जिसे रंजीत बारोट ने कंपोज किया था और गुलजार साहब ने लिखा था। आइए वही गीत अब सुने।

फिजा फिल्म का संगीत वैसे तो काफी पॉपुलर हुआ पर इस गीत को उतनी पहचान नहीं मिल पाई। 2001 में एक फिल्म आई थी मुझे कुछ कहना है, जिसमें एक सोनू निगम का गीत था गुंचा है गुल है, जिसमें जुबिंदा का आलाप भी था। 2001 में ही अशोका फिल्म आई थी जिसके गीत रोशनी से को अभिजीत और अलका याग्निक ने गाया था और इसमें जुबिंदा का स्वर भी था। 2002 में एक बड़ा ब्रेक मिला उन्हें फिल्म कांटे से, जिसमें आनंद राज आनंद ने फिल्म के तीन गीतों रामा रे माही वे और सोचा नहीं था में जुबिंदा का स्वर इस्तेमाल किया। उसमें से एक गीत आज पेशे खिदमत है सोचा नहीं था, जिसे जुबिंदा ने शान के साथ गाया था। आनंद राज आनंद का संगीत है इस गीत में और गीत को लिखा है देव कोहली जी ने।

2003 में जुबिंदा को अवसर मिला प्रीतम के साथ काम करने का। फिल्म थी मुद्दा द इशू। इस फिल्म में प्रीतम ने जीत के साथ जोड़ी बनाकर संगीत दिया था। उसका ये गीत सुनेंगे सपने सारे, जिसे लिखा है सौरभ शुक्ला ने।

2004 में फिल्म आई थी एक हसीना थी, जिसमें संगीत था अमर मोहिले का। उसमें ये डुएट था डोमिनिक सरेहो के साथ, जो इस फिल्म का टाइटल गीत है। आइए इस गीत को सुने, जिसे लिखा है अब्बास टायर वाला ने।

2004 में ही आई थी फिल्म गर्व, जिसमें सुनिधि चौहान के साथ एक डुएट था जुबिंदा का। आइए उसी को सुने। इसे कंपोज किया था अनु मलिक ने और लिखा था देव कोहली साहब ने।

अगला गीत जो मैंने चुना है उसे भी देव कोहली साहब ने ही लिखा है, जिसे रंजीत बारोट ने कंपोज किया था। इस गीत को साउंडट्रैक के लिए रिकॉर्ड किया गया था जुबिंदा की आवाज में 2005 की फिल्म ब्राइड्स वांटेड के लिए। आइए ये गीत सुने, पायल की छम छम।

0: साल 2006 सुबिंदा के लिए नेशन वाइड पॉपुलैरिटी लेकर आया, लेकिन 2006 के दो तीन जो गीत मैंने चुने हैं उनको सुनाने से पहले आपको 2007 की फिल्म बिग ब्रदर का एक गीत सुनाना चाहूंगा। इसे संदेश शांडिल्य ने कंपोज किया है और अनिल पंडित ने लिखा है। जग लाल लाल लाल,
1: जग लाल।

2006 में राहुल बोस और मल्लिका शेरावत को लेकर एक फिल्म आई थी प्यार के साइड इफेक्ट्स, जिसका संगीत प्रीतम ने दिया था और खूब चला था। उसका मयूर पुरी का लिखा हुआ ये गीत मुझे उस समय बहुत पसंद आया था और इसको मैं रिपीट मोड में सुनता था। इसमें जुबीन के साथ अन्य स्वर भी हैं। चलिए आपको ये प्यारा गीत सुनाऊं, जाने क्या चाहे मन बावरा।

अगला गीत मैंने 2006 की फिल्म बस एक पल से लिया है। इसमें जुबिंदा के साथ दूसरा स्वर है एक और ऐसी हस्ती का जो हमसे बहुत जल्दी दूर चली गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मशहूर सिंगर के की। इस दो गाने को आइए सुने, जिसे संगीतबद्ध किया है एरिक पिल्ले ने और लिखा है अमिताभ वर्मा ने।

केके के साथ जुबिंदा का बहुत प्यार भरा रिश्ता था। 2006 में प्रीतम फिल्म गैंगस्टर पर काम कर रहे थे और उन्होंने केके से एक गीत गवाया था, तू ही मेरी शब है। प्रीतम साहब कई बारी फिल्म में एक ही गीत एक से ज्यादा गायकों से गवा देते हैं और कभी कभी किसी का रिकॉर्ड कराकर रिजेक्ट भी कर देते हैं। तो उन्होंने जुबिन को अप्रोच किया कि ये गीत मैं केके से गवा चुका हूँ, तुमसे भी गवाना चाहता। तब जुबिंदा ने क्या किया था, यह उन्होंने अपने एक शो में बताया था किस्सा। उन्होंने कहा केके ने इसे गा लिया है और बहुत ही अच्छा गाया है, मैं इसे दोबारा नहीं गाऊंगा, पर हाँ आप कोई और गीत मुझे देना चाहें तो मैं गाने के लिए तैयार हूँ। तब प्रीतम ने एक गीत जुबिंदा को दिया था जो हिंदी फिल्मों में जुबिंदा का एंथम बन गया, जिसे लिखा था सईद कादरी ने। वही गीत आइए हम सब सुने और जुबिंदा की आत्मा को नमस्कार करें, या अली।

यदि हिंदी फिल्मों में याली जुबिंदा का एंथम था तो असमिया फिल्मों में उनका एंथम था 2001 की फिल्म दाग का गीत मायाबिनी, जिसको जुबिंदा ने कहा था कि जब मेरी अंतिम विदाई हो तो इस गीत को गाया जाए। मुझे यानी गजेंद्र खन्ना को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। सी यू सून।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। फोकस ऑन द रोड, वेयर योर सीट बेल्ट, डोंट यूज मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: आपकी आवाज, आपका रेडियो, आपके शहर में आवाज FM।
4: आजा

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: समीन, वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। ये है रेडियो वाज एफएम साउथहैम्पटन, अहमद से आपसे मुखातिब है। आइए अगली एक और अहम शरीफ आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। कोई तो है निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। हम शरीफ पेश करते हैं जनाब आवाज़ उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान, अल्लाह ताला जन्नत नसीब फरमाए।

कोई तो है निजामे हस्ती चला रहा है, वही खुदा है बेशक जी। हम शीफ पेश कर रहे थे जनाब उस्ताद नुसरत फतेह अली खान, खुदा जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। जब भी इनका नाम लिया जाएगा बड़े फख्र से ही लिया जाएगा इंशाल्लाह। आइए अगली एक हम शीफ सुनते हैं। ये सूरज चांद का आना मेरे अल्लाह की कुदरत है। इस हम शीफ को पढ़ रहे हैं जनाब हाफिज़ ज़ुबैर अहमद, समाअत फरमाइए।

मेरे अल्लाह की कुदरत है। ये हंसी पढ़ रहे थे जनाब हाफिज ज़ुबैर अहमद। समीन, बहुत से आप साथी मुझे व्हाट्सएप पे और ज़ाती भी भेजते हैं पैगाम, सलाम भेजते हैं और जुमे की मुबारक में भेजते हैं। सब की खिदमत में जिन्होंने मुझे सलाम भेजा, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुह, और आप सब सुनने वालों को भी जुमा की मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अक्सर आपके भेजे हुए पैगाम से कुछ ना कुछ पैगाम कभी ना कभी यहाँ पढ़ देता हूँ। एक साहब लिखते हैं, कहते हैं जी, खाली हाथ रह जाते हैं वो लोग जो दूसरों की खुशियाँ छीन लेते हैं। इस शख्स को कोई नहीं बदल सकता जिसे अपने अंदर कोई गलती नज़र ना आती हो। अगर कोई शख्स आपको इज्जत देता है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत अजीम इंसान हैं, बल्कि ये कि वो शख्स ख़ुद एक आला ज़र्फ़ इंसान है। दुआ करता हूँ कि हम सब आला ज़र्फ़ ही बने, दूसरों को बेहतर ही समझें। अल्लाह ताला सबको अच्छा बना दे और आपके साथ साथ मुझे भी। अगली हमद शरीफ आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। याद खुदा में दिन को संवारें, ज़िक्र खुदा में रातें गुजरें। पेश करते हैं जनाब ज़हीर उस्मानी। समीन समात फरमाइए।

0: मुझे तो कोई भी नहीं जानता, ये तो आप हैं कि जिन्होंने मेरा नाम पहुंचाया है।
1: बस जी ऐसे मिलजुल के, इट इज़ ए टीम वर्क, आप मैं हूँ तो आप हैं, आप हैं तो हम हैं, ऐसी बात है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तशरीफ़ फरमाई है, इसकी मैं दिली माजरत चाहता हूँ कि आप सिर्फ आप ही नहीं, बहुत सारे साथी बड़े ही मायूस हैं क्योंकि हमारा कोई इंटरनेट का सिलसिला ठीक नहीं हो रहा, और हमारी भी मैनेजर साहब से बड़ी ही बातें होती रहती हैं, तो उनका एक बड़ा ख़ास फिक्र है जी, आई एम वर्किंग ऑन इट।
0: बस
1: तो आप ज़हर जान बुझ के वो भी नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ तो है ऐसा जो आप समझ नहीं आता या कुछ गायब हो जाता है, पर एनीवे लगे हुए हैं। इंटरनेट तो फिलहाल ठीक है यहाँ पे, अब बाहर जाने का हमारा ऐप अभी ठीक नहीं हुआ, और आप ज़हर किसी और ऐप से कहीं सुन रही होंगी आप, क्योंकि हमारा जो हमारे ऐप में तो सिर्फ 404 ही आता है मेरे ख्याल में, एरर। अच्छा
0: जी, तो, एरर आता है।
1: जी तो इसलिए
0: कोई नहीं, ये तो वो तलाश की बात है
1: जी, तो... जो तलाश करने वो तलाश करने वाले हैं जी, हमें कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेते हैं, वैसे बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।
0: बिल्कुल ऐसे ही है।
1: तो बहुत शुक्रिया जी आपकी मेहरबानी, आप तशरीफ़ फरमा आई हैं, आप सुनाइए आज क्या हमारे लिए लाए हैं आप।
0: जी बिल्कुल, मैं पेश करती हूँ, असल में मुझे तो लगता है कि ये लफ्ज तो लिखे ही इसी प्रोग्राम के लिए जाते हैं, क्योंकि ये भी एक ज़ाहिर है एक सादत की बात होती है जब आप नात लिखते हैं, कहते हैं और सुनने वाले सुनते हैं, और ये इस प्रोग्राम के तवस्सुत से अगर मुझे मौका मिल रहा है तो ये आप सबकी वजह से है।
1: आपकी मेहरबानी और नवाजिश है जी कि आप लिखती हैं ख़ास तौर पे इस प्रोग्राम के लिए, तो इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपको और हिम्मत, बरकत और कामयाबियाँ अता फरमाए, हमारी दिली ख्वाहिश भी है और दुआ भी है जी।
0: मैं पेश करती हूँ
1: जी।
0: मेरे रसूल करीम
1: सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी,
0: आपकी काली कमली में इतने रंग हैं कि ये रंग बहारों को मात दे रहे हैं, गुलाब और मोतिया की खुशबू जो मेरी सदा में उतरे तो नगमा मुहम्मदी कहलाएगी, मेरी हथेली पे उतर आए तो दुआ को सुबह नूर में बदल देगी, और मेरे दिल में उतरे तो आपकी वो रहमत में असर आएगी कि जिसके इंतजार में जिंदगी के दिन इस तरह ढल गए कि जैसे कभी शुमार में थे ही नहीं, मगर मैं तो मांगने वालों की कतार में ही हूँ मेरे रसूले करीम, मेरी इल्तजा तो दरअसल रहमत की मुतकाजी है, और वो तकाजा जो रहमत से भरा हो, पुकार का एक ऐसा तसलसल रखता है कि जिसमें गम शनासी वो इनाम है कि जिसने रहमत को कहीं दिल में।
1: जी कहीं आवाज तो नहीं कट
0: गई, जिसने रहमत को
1: जी
0: कि जिसने रहमत को कहीं दिल बना दिया, कहीं दुआ कहीं करम कहीं बख्शिश कहीं अता कहीं ढाल कहीं वो फूल के जो बिन मौसम भी खिल सकते हैं
1: जी,
0: मेरे रसूले करीम
1: सल्लल्लाहु,
0: मेरे रसूले करीम
1: माशाल्लाह,
0: बहुत शुक्रिया।
1: बहुत खूब जी, शुक्रिया आपके, मशकूर हैं हम टीम समेत, मैनेजर समेत, सब समेत, और ख़ास तौर पर हमारे काजी अमीन साहब अभी तक मेरे ख्याल में टैक्स नहीं किया उन्होंने, वो भी बड़े शौक से आपका अक्सर पूछते हैं, तो बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, आपने सबको खुश भी कर दिया, अपना ताज़ा तरीन कलाम भी सुना दिया, महफिल में आके तो चार चांद लगा दिए, और फ़ोन करके हमारा दिल गार्डन गार्डन भी कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, खुदा खुश रखें। शायद लान में कोई गड़बड़ी है, अल्लाह हाफिज़। समीन, कुछ गड़बड़ी आती है कुछ लाइन में कभी कभार, और ऐसा ही है, बरअल ये हमारी एक बहन थी रावलपिंडी पाकिस्तान से आती हैं जनाब कोकब अली, द लेडी पोइट ऑफ रावलपिंडी, इनका तअल्लुक यूक्रेन से भी है, और ये अक्सर यहाँ आया करती हैं, और आप बहुत सारे लोगों को यही शिकायत है कि हमारी जो इंटरनेट में ऐप्स है वो नहीं चल रही, उसका नंबर 404 ही आ रहा है एरर, तो इंशाल्लाह जल्दी काम हो रहा है, और जल्दी ही कामयाबी ज़रूर हो जाएंगे, हमारे कामयाब हो जाएंगे मैनेजर साहब, तो लगे हुए हैं उसके अंदर। लीजिए अगली एक कवाली की शक्ल में हमदिया प्रोग्राम इसमें जारी है, आपको सुनवाता हूँ। या अल्लाह या रहमान, मैं तेरी किबरियाई पे कुर्बान, हमद पेश कर रहे थे जनाब उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान, आपको

छड़ी ना दिखाओ। गलत है सब पर लगे है सही, आंखें बंद कर डरेगी तो नहीं, जो भी मैं बोलूंगा करेगी तो वही, जहां तूने छुआ मुझे वहां तू गई।

0: From the flight path at Southampton Airport to the ocean terminal at Southampton Docks, you're listening to Hours FM. 24 hours a day, Hours FM, online and on air. On 99.8 FM and online around the world, this is Southampton's Hours FM News.
1: On 99.8 FM and online around the world, and on digital DAB radio across South Hampshire, this is Southampton's Awaz FM News.
2: Do News ke saath, main hoon Mukarram Abbas. Sabse pehle aaj ki headlines par ek nazar. ईरान में जोहरी अदम फैलाव के मौदे एनपीटी से निकालने के लिए बिल ईरानी पार्लियामेंट में जमा करवा दिया गया। रशिया के पार्लियामानी इंतखाबात में प्रेसिडेंट प्यूटिन की हिमायत याफ्ता जमात यूनाइटेड रशिया ने वाज़े बर्तरी हासिल कर ली। इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने स्कूलों में फीमेल स्टूडेंट्स के नकाब या बुरका पहनने पर पाबंदी का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मक्का मौईदा ना भी हो तो मुकद्दस मकामात की हिफाजत हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के माहिरीन ने कहा है कि एआई 10 सालों में इंसानी वजूद को ख़त्म कर सकती है। और थाईलैंड ने गैर कानूनी बिजनेस और गैर मुल्कियों की तरफ से नामजद जायदादों की खरीदारी के खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। और अब इन खबरों की तफसील। ईरानी कानून साजों ने मुल्क को जोहरी अदम फैलाओ के मौदे एनपीटी से निकालने के लिए बिल ईरानी पार्लियामेंट में जमा करवा दिया है, जिस पर बहस की मंजूरी स्पीकर बाकर कालीबाफ मंजूरी देंगे। बिल के मतन में मौकफ इख्तियार किया गया कि जोहरी अदम फैलाओ के मौदे एनपीटी में रहने का ईरान को कोई फ़ायदा नहीं, ईरान पर मुसलत जंग बिगड़ती माशी सूरत हाल के बायस एनपीटी में रहना ईरान के लिए नुकसानदेह है, अपने अमूर के आज़ादाना फैसलों के लिए एनपीटी से निकल जाना ही बेहतर है। थाईलैंड ने गैर कानूनी बिजनेस और गैर मुल्कियों की तरफ से नामजद जायदादों की खरीदारी के खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। जराइम और खिलाफ वर्जियां सामने आने पर गवर्नमेंट ने वीज़ा फ्री क़याम की मुद्दत को 60 दिन से निस करके 30 दिन कर दिया है। थाई हुकूमत का कहना है कि अब मजीद गैर कानूनी काम करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने स्कूलों में स्टूडेंट्स के नकाब या बुरका पहनने पर पाबंदी का ऐलान कर दिया है। हर क्लास में एक हद से ज़्यादा गैर मुल्की स्टूडेंट्स रखने की इजाज़त भी नहीं होगी। इटली के प्राइम मिनिस्टर के मुताबिक इकदामात की जल्द कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी। इसके अलावा गैर मुल्की स्टूडेंट्स के वालदेन को भी इटालियन सीखना लाजमी होगा। रशिया के पार्लिमानी इंतखाबात के इब्तदाई नतज के मुताबिक प्रेसिडेंट व्लादिमीर प्यूटन के हिमायत याफ्ता यूनाइटेड रशिया ने वाज़े बर्तरी हासिल कर ली है। 95% से जायद वोटों की गिनती के बाद यूनाइटेड रशिया को तकरीबन 57.83% वोट मिले और जमात को 450 रुकनी स्टेट डोमा में तकरीबन 355 नशिस्तें मिलने का इम्कान है। ये इंतखाबात साल 2022 में यूक्रेन पर रशिया के मुकम्मल हमले के आगाज़ के बाद मुल्क के पहले पार्लिमानी इंतखाबात हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मक्का मौईदा ना भी हो तो मुकद्दस मकामात की हिफाजत हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। मक्का मौईदा हम पर लागू होता है, हम मक्का मौईदे पर अमल करने के पाबंद हैं। पाकिस्तान ने सऊदी अरब का पैगाम ईरान को पहुंचा दिया है, उम्मीद है ईरान मजीद हमलों की गलती नहीं करेगा। इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने स्कूलों में स्टूडेंट्स के नकाब या बुरका पहनने पर पाबंदी का ऐलान कर दिया है। हर क्लास में एक हद से ज़्यादा गैर मुल्की स्टूडेंट्स रखने की इजाज़त भी नहीं होगी। इटली के प्राइम मिनिस्टर के मुताबिक इकदामात की जल्द कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी। इसके अलावा गैर मुल्की स्टूडेंट्स के वालदेन को भी इटालियन सीखना लाजमी होगा। सामीन, ये थी इस वक्त तक की अपडेट्स। मजीद अपडेट्स के लिए सुनते रहिए अपडेट्स के लिए सुनते रहिए

सामीन, आज की पहली गज़ल पेश की थी मैंने, अनुमान था गम बदिल शुक्र बल्लभ मस्त नज़र का चलिए जब तलक साथ तेरा उम्र गुजारें चलिए। आवाज़ थी मजीब आलम की। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह अनुमान भी और आवाज़ भी पसंद आई होगी। अगली एक आवाज़ पेश करता हूँ, मंजरी नाम है जी इनका जो इस गज़ल को पढ़ रही हैं, और अनुमान कुछ ऐसा है, कहती हैं लज्जते गम बढ़ा दीजिए आप फिर मुस्कुरा दीजिए। पेशे खिदमत है।

नम आंखें सूख न पाई, गिरते आंसू ने कसमें उठाई, छोटी सी चाहतें लगाई। ये नबील शौकत की आवाज़ और उनके साथी आपको सुना रहे थे। सामीन, आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ एफएम साउथहैम्पटन। मैं हूँ अहमद साई, आपकी खिदमत में मिली जुली गज़लों का ये प्रोग्राम लेकर आया हूँ आपकी खिदमत में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर कुछ ना कुछ पसंद आएगा। अगली गज़ल सुनते हैं, मुकेश की आवाज़ है और मुकेश की आवाज़ कौन नहीं जानता। इनका कहना है जी, आंखों में बस के दिल में समा कर गए, खाबीदा जिंदगी थी जगा कर चले गए।

चले आ रहे हैं वो जुल्फें बखेरे। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की आप सुन रहे थे। समीन आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ FM साउथहैम्पटन 99.8 FM पे और DAB रेडियो पे सुनते हैं जी गिरदोनवा में, साउथहैम्पटन के गिरदोनवा में, और पूरी दुनिया में आप सुनते हैं www.awazfm.co.uk। अखुन से आपकी खिदमत में हाजिर है और आपकी खिदमत में आज ये गज़लों का प्रोग्राम पेश करता है। अगली आवाज़ लाता हूँ मैं आपको, ये भी बड़ी ही जानी पहचानी है पाकिस्तान की, मेहदी हसन, कौन नहीं जानता। ये कह रहे हैं जी अपनी इस गज़ल में, दीवारों दर पे नक्श बनाने से क्या मिला, लिख लिख के मेरा नाम मिटाने से क्या मिला।

दीवारों पे नक्श बनाने से क्या मिला, लिख लिख के मेरा नाम मिटाने से क्या मिला। सामीन, ये आवाज़ थी जानी पहचानी मेहदी हसन की, अपनी ये गज़ल पेश कर रहे थे। अगली एक और गज़ल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, ये भी नाम काफ़ी जाना पहचाना है। और कहते हैं, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तुम ही धनवान हो गोरी, बाकी सब कंगाल, पंकज उदास।

चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। जी, पेश कर रहे थे पंकज उदास। अगली एक और गजल पेश करता हूं। कहते हैं, पिछली याद भुला दो गुजरे बीते अफसानों का, हर एक नक्श मिटा दो। पेश करते हैं जी, ये फिल्मी गजल है, फिल्म का नाम है मेहंदी और गाने वाले हैं किशोर कुमार।

0: You're listening to Awaaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaaz is here. Awaaz FM on 99.8.
1: Sameen, welcome back. After the break, aapne suna. Tha isse pehle ghazal thi Ashok Kumar ga rahe the film Mehdi se Pichli Yaad Bula Do. आइए सुनते हैं उस्ताद गुलाम अली की आवाज में एक गजल. कहते हैं दिल में एक लहर सी उठी है, अभी कोई ताजा हवा चली है, अभी

0: दिल में लहर सी उठी है अभी। समीर आप सुन रहे थे गुलाम अली, उस्ताद गुलाम अली। अब सुनते हैं महेंद्र कपूर को फिल्म निकाह में, ये गजल पढ़ते हैं। कहते हैं, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो मुलाकात तो होगी।
1: अभी अलविदा मत कहो।

बीते हुए लम्हों की कसक सात होगी। आप सुन रहे थे सामीन महेंद्र कपूर की आवाज में ये गजल। अगली एक और गजल पेश करता हूँ। कहते हैं दुनिया बेवफा है कोई बावफा नहीं, मैं मुंतजिर हूँ कजा का आती कजा नहीं। आवाज मोहम्मद नवाज भुट्टा।

चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन संदेश लगा के तुम ठेस, तो फिर तुम चले गए। ये जगजीत सिंह की आवाज़ में आपने ये गज़ल सुनी। आइए थोड़ा सा स्टाइल गज़ल का बदलता हूँ कव्वाली की शक्ल में। अगली ये गज़ल है और ये भी बहुत ही मरूफ हस्ती हो गुजरे हैं, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान और उनके साथी। कव्वाली की शक्ल में है ये गज़ल। कहते हैं, आँख उठी मोहब्बत ने ली अंगड़ाई, दिल का सौदा हुआ चांद की रात में, उनकी नजरों ने ऐसा जादू किया, लुट गए हम तो पहली मुलाकात में।

दिल का सौदा हुआ चांद की रात में, ऐसी बात थी जी। और ये गजल गा रहे थे नुसरत फतेह अली खान, मरहूम, खुदा इन्हें जन्नत नसीब करे। अगली जो गजल पेश कर रहा हूँ, मिर्जा गालिब का ये कलाम है, लता मंगेशकर इसे आवाज दे रही हैं, और जानी पहचानी गजल है बहुत सारी। कहते हैं हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले।

हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। सामीन, आपने ये कलाम मिर्ज़ा गालिब और आवाज़ लता मेश्तरी की सुनी, और आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ FM साउथहैम्पटन। मैं हूँ अहमद साईं। मेरे प्रोग्राम का वक्त अब हो रहा है ख़त्म, और जाते जाते एक गज़ल तो आपको छोड़ के जा ही रहा हूँ, पर बता देता हूँ कि ये गज़लों का प्रोग्राम आज जुमातुल मुबारक को मैंने पेश किया है, और हमेशा है हर जुमातुल मुबारक की शाम 6 से लेकर 8 बजे तक आपकी खिदमत में पेश करता हूँ मैं रेडियो आवाज़ FM साउथहैम्पटन से। साउथहैम्पटन में तो हम 99.8 FM फ्रीक्वेंसी आप हमें सुन सकते हैं, मगर साउथहैम्पटन के बाहर हमारी दूसरी फ्रीक्वेंसी है डीबे रेडियो जो है, वो डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्ट, उसमें भी आप हमें ट्यून कर सकते हैं। लोकल जो फ्री व्यू चैनल्स हैं उसमें भी आप टीवी में अगर ट्यून करना चाहें तो वहाँ भी आप हमें सुन सकते हैं। और बड़े मज़े की बात है कि जहाँ जहाँ आपके पास इंटरनेट है वहाँ आप हमें सुन सकते हैं इंटरनेट पे पूरी दुनिया में। www.awazfm.co.uk पे जाएं और पूरी दुनिया में हमें सुन पाएं। वहाँ पे लिसन लाइव भी आप सुनते हैं और लिसन बैक भी सुन सकते हैं। लिसन बैक का फ़ायदा कुछ यूँ है कि अगर कोई प्रोग्राम आपके किसी चाहने वाले का या आपका पसंदीदा प्रोग्राम अगर आपसे कहीं रह गया तो आप दोबारा भी उसे सुन सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो अभी प्रोग्राम हमारा लगा हुआ है, चल रहा है, ये जब ख़त्म होगा तो फौरन को 5-10 मिनट के बाद आप दोबारा देखेंगे कि लिसन बैक में चला जाएगा, और वहाँ ये प्रोग्राम तकरीबन कोई 14 डेज़ के लिए रहते हैं, 14 दिन, और आप वहाँ पे सुन सकते हैं। उसके बाद 14 दिन के बाद तीसरा प्रोग्राम जो नया होता है वो आता है, मगर जो पहला प्रोग्राम होता है वो ख़त्म हो जाता है। ये फैसिलिटी रेडियो आवाज़ की मैनेजमेंट में दी है। ये रेडियो आवाज़ आप ही का रेडियो है, कम्युनिटी का रेडियो है। आप इसमें तशरीफ़ भी ला सकते हैं और अपनी आवाज़ भी पहुंचा सकते हैं। आप जाएंगे जब www.awazfm.co पे तो आपको पूरी तफसील वहाँ मिल जाएगी, हमारे टेलीफोन नंबर मिल जाएंगे, आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, ईमेल मिल जाएगा, जो पैगाम आप भेजना चाहें तो आप भेज सकते हैं। अब मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। जाते जाते मन्ना डे की जो एक गज़ल है 1982 में इन्होंने पढ़ी थी, वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। कहते हैं जी, शाम हो जाम हो सुबह भी हो तुझको पाने की जस्तजू भी हो। क्या बात है जी, हाजिर खिदमत है। इसी के साथ यार जिंदा सोबत बाकी, खुदा हाफिज़।

0: You sound like you were going to cry just then. That gentleman was really horrible.
1: He was really getting up my nose.
0: He stole my dinner money.
2: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
3: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaz FM on 99.8.
4: This is Natalie DeLuccio and Sunseirahi Awaz FM.

0: the jukebox.
1: Drive time on a WAZ with Aaron. Chat, tunes and travel updates that may or may not be accurate. Join me Mondays 4 to 6 only on a WAZ FM 99.8 FM.
2: So we need a new jingle, Ali. We got to get in that studio and produce a new jingle.
3: Uncle,
4: मुझे तो बड़ी हो के एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था, मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था, मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Focus on the road. Wear your seatbelt. Don't use mobile phones while driving. Drive responsibly. घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: Southampton's Community Radio, Hours FM.
4: Hello, my name is Oswa in Southampton calling you. And can you put that Dance Monkey song?
5: Kiss 99.8 Hours FM. Music to make you dance like nobody's watching. Yeah. But who's that?

0: Hello, Ali. Malcolm here in Portsmouth. Many thanks for your two phone calls. I am now tuned into AWAS, and it's showing clearly on my digital sign on my radio. Lovely to hear you back again. See you soon. Bye.
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
2: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB, and on the internet. Awaz FM on 99.8.
3: Southampton's community radio, Awaz FM.
4: Hello, my name is Ursula in Southampton calling you. And can you put that Dance Monkey song?
5: Kiss 99.8
6: Awaz FM. Music to make you dance like nobody's watching. Yeah. But who's that? There's

0: कर लेना।
1: From the flight path at Southampton Airport to the ocean terminal at Southampton Docks, you're listening to Hours FM.
2: Hello, this is Ifana Simro. I'd like to dedicate this to Hours Radio Southampton and the whole team. Naam gum jayega, chehra badal jayega, meri awaaz se pehchan. Thank you, Ali.
1: Southampton's Community Radio, Hours FM.
3: एक पल की लापरवाही।
4: अंकल, मुझे तो बड़ी होके एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था। मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था।
5: मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। फोकस ऑन द रोड, वेयर योर सीट बेल्ट, डोंट यूज मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: You're listening to Hours FM.

चोरी मोर बना देगी। यो नार एच आर लठ मार तड़ी पार रखे आकड़ चोरी ताकड़ चोरी कभी भी दर्दे चापड़ चोरी नैने बरती ना कोई चोली मुँह से गाली आँख से गोली। बदल तू अपनी सोच ये छोटी कमर पे घस के बांध ले धोती कंधे तय कंधा मिल जाए इब छोरी छोरा तय कम नहीं होती करे।

0: हम सॉरी बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव responsibly. फोकस ऑन द रोड।
2: From Wollstone to West End, from Millbrook to Marchwood, this is Hours FM.

0: आवाज FM।
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवरटाइज कीजिए आप अपने आवाज FM पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज FM के साथ।
2: You're listening to Awaaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
3: Awaaz FM, local radio. Communities making waves, turning the tide on isolation.

0: song on the radio. Contact us now.
1: एक पल की लापरवाही.
2: अंकल, मुझे तो बड़ी हो के एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था. मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था. मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था.

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। फोकस ऑन द रोड, वेयर योर सीट बेल्ट, डोंट यूज मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: Drive on your smart speaker. Drive. Discuss. Debate. Deliver. Driven. Dedicated.

0: because you use the road doesn't mean you own it. Respect everyone's journey.
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
2: How do you say it? Awaz? For a waz.
3: Code bol bagar. Hey, Pondi. Sangre sunya.

0: This is Shweta Subram and keep listening to Awaaz FM. You guys are awesome.
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
2: You're listening to Awaaz FM 99.8 MHz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
3: Hello, my name is Hira Singh and I have my son birthday today and I for my son his song for Nusrat Fateh Ali Khan. ਮਾਹੀ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਮਾਹੀ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਨਸਰਤ ਤੇ ਲਿਖਾ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ
4: ਸਾਊਥਹੈਂਪਟਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੇਡੀਓ ਆਵਰਸ ਐਫ ਐਮ

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Focus on the road. Wear your seatbelt. Don't use mobile phones while driving.

0: From Wollstone to West End, from Millbrook to Marchwood, this is Hours
1: FM.
0: You're
1: listening to Hours FM 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Hours FM on 99.8.
2: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here, and your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
3: दोस्तों, मैं हूं सीमा सरगम। मेरा प्रोग्राम आवाज कैरियोकी क्लब सुनना ना भूलिए, जो कि हर संडे शाम 6 बजे से 8 बजे तक आवाज एफएम पे ब्रॉडकास्ट किया जाता है। इस प्रोग्राम में आप ही की आवाज में गाए हुए कैरियोकी गीत पेश किए जाते हैं। अपने गीत भेजने के लिए व्हाट्सएप का ये नंबर जरूर नोट कर ले। नंबर है 07784691440। रिमेम्बर, आवाज कैरियोकी क्लब एवरी संडे 6 to 8 p.m.

0: आजा प्यार की हो डील।
1: डील बोले तो
2: हाट हाट
3: हमा यार सौदा सौदा।
1: ओहो
0: दोनों डील करा सील।
2: टाइट टाइट वेरी टाइट।

0: अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल या? मैं हुणी ग्राउंड आया सा, घर प्रोग्राम तुहाड़ा लाया, डाउनलोड किया। तू बोल सी तेरे सा कोई फरमाइश कर सा ना, कोई केड़ा गाना सुनना चाहे आप अपने वेले वाला या दोया वाला, जेड़ा गाना असा आखसा ला से ना, ते माड़े मैसेज ले पहुंचनी है फिर मैं सुना।
1: In Britain today we all know that many many people are trapped behind the wheel of a car. We ask which is the best way to reach them. Let's see the figures. Look at that, an enormous 14 million of them are listening to commercial radio. By contrast, only 300 are reading their newspapers whilst at the wheel. All of them cabbies. Overwhelming evidence that for the motorist, radio is the route that's right.
2: Radio, the medium that's now large.
3: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046 or you can email info@hoursfm.co.uk.
4: एक पल की लापरवाही।
5: अंकल, मुझे तो बड़ी हो के एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था, मुझे बड़ी हो फिर डॉक्टर बनना था, मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: How do you say it? A was or a was?
3: Hello, this is Uso again. This time, can you put Dance Monkey, please, for me and my Baba?